0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धड़कन।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार गंगापुर सिटी। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: शहनाज।
3: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: संजय कॉलोनी।
3: बताएं शहनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
4: जन्नत सॉन्ग है।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश पर ये सॉन्ग। हेलो
5: हेलो सर,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: 89.6 Radio DS, जहाँ हर frequency पर है गंगापुर city का असली flavour.
2: नमस्कार जी।
3: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू केड़ा से।
3: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: राजस्थानी मूवी का है 42 शास्त्रीय, फिल्म का नाम है 42 शास्त्रीय और गाने की बोल है छोटी सी उम्र परनाई ओ बाबोशा।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in BS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET.
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: आंसू की से लगी तुझे साजन
1: है सर,
2: आंसू की से लगी तुझे साजन, मतना बुला दे रे साजन।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6,
4: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो DS।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस में?
1: किया किया।
0: हाँ जी
1: किया किया
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, जिला विदिशा मध्य प्रदेश नगरी से।
3: हारून जी बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: फिल्म का नाम है जनता की अदालत
3: जी,
4: उसमें से आप सुनवा देना। हम भी पागल तुम भी पागल
3: सर, आपकी फरमाइश करेगा। हेलो

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: बाबू गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बुलेट पे मार गाड़ियाँ।
1: क्या करते हैं आप?
0: नहीं।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
0: सेवेंथ।
1: सेवेंथ क्लास में पढ़ते हैं?
0: हाँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डी एस में आपने कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो सर, थोड़ी सी कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। थोड़ा सा तेज बोले आप।
1: आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी
0: हाँ, बहुत कम आ रही है। नाम बताएं आपका।
1: कानपुर बड़ौदा से दिव्यांश।
0: खानपुर बड़ौदा से कौन बोल रहे हैं?
1: दिव्यांश
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: यार, कोई सुना दे। चावन का गाना
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर। एक

0: अमीशा।
1: अमीशा कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: आवारा।
1: आवारा सॉन्ग?
0: हाँ
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश से आवारा सॉन्ग।

0: शिवा।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: अरे वो गाना सुनना चाहता हूँ यार, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: सर, नमस्ते। नाम बताएं आपका। बिल्कुल,
1: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।
0: साउंडकर जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: तो सर, आजा आई बहार, मैं हूँ राजकुमार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का एक गाना रेडियो डीएस में।

0: करते हैं?
1: ममता गुजर।
0: नाम बताएं सर।
1: ममता गुजर।
0: ममता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं ममता जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सोने रंग दे सावन।
0: हाँ जी
1: सोने रंग दे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करता हूँ। हेलो
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
5: 89.6 पे
2: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: एक किस्त तो बनती है।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए।
0: रफीक कहाँ लोग मजरी के पीछे से?
1: गाना बताए।
0: अपने तो अपने होते हैं।
1: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अभिषेक
0: अभिषेक कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सवाई माधोपुर।
0: गाना बताएं सर।
1: हम गम आड़े बालक से
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, इससे तो बात।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: हाँ, अजय सर जी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जंगलपुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना अमित सैनी का रूट सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर रूट सॉन्ग।

0: हेलो
1: मस्तुकी
0: सर, नमस्ते। नाम बताएं आपका।
1: अभी जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी। तो सर यार गाना सुना जी मुझे फिल्म बंदी का, जिसे यार का सच्चा प्यार मिले।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सॉन्ग। रेडियो टीएस में कुल किया, धन्यवाद।
1: ओके सर जी, थैंक यू।

0: तो कुंडी खोल लेते यार, मैं देता का
1: नहीं सर, फिल्मी गाने में बता सकते हैं सर आप, यहाँ से फिल्मी गाने के अलावा दूसरे गाने नहीं चलाएंगे हम।
0: फिल्मी गाना मासी शर्मा चला दो, बढ़िया
1: ठीक।

0: हेलो
1: ती
0: हेलो नमस्ते।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ अभी जी से।
1: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना बढ़िया ला है, दीदी लिखो।
1: हाँ जी बताइए।
0: मेरे जैसी हसीना का दिल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:32 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइस 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
2: रोहित है ना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
2: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: मासूम शर्मा का सुना दो कोई सा भी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो
1: सर जी, प्यार से सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल सर, नाम बताएं आपका।
1: मैं जी पिंड मौड़कुर जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा सर जी।
0: जगजीत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएस से।
1: सर जी मेरे मानजोग बड़े भरा है जी अपने हरचंद सिंह जी, उन्होंने की फरमाइश है जी एक पंजाबी सॉन्ग सुना दो जी अज कृपा करके।
0: बताएं सर पंजाबी कौन सा गाना है।
1: हाँ जी सारे मानयोग कलंगा के बादशाह श्री कुलदीप मान साहब जी की आवाज है जी, माँ होंगी है माँ वो दुनिया वाले हो सर जी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में पूरी किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चंगा सर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आते रहो
0: सत
1: बसते रहो जी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: अंजलि।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मिंगापुर सिटी से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: जरा सा सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश पे।
2: कुछ नहीं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं। कोमल
1: कोमल,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी,
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जान जरिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: पंकज भैया।
0: पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सौरभ खटाना।
1: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं पटेल नगर।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: नाम बताएं सर।
1: योगेश टाडू।
0: योगेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: किताब।
0: किताब सुन।
1: यस सर।
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश करेगा।

0: नाम बताएं।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता है।
0: सुनीता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सुनीता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
1: बता सुनना सुनना रंधन हवा, उसका कोई रंधा होगा।
0: कौन सा गाना है मैम?

0: जी नाम बताएं।
1: मेरा नाम वसीम अकरम है।
0: वसीम अकरम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रामपुर उत्तर प्रदेश से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आंदोलन मूवी का सुनवा देना, बदल गई है दुनिया, बदल गया जमाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: सोनू मीणा।
0: सोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नसिया कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सपना वन के आजा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है।
2: कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, अपनी भाभी नाराज हो गई।
3: ना यार, नाराजगी वाली तो कोई गल नहीं, दो तीन दिन हो गए ना उहदा कोई मैसेज आया ना कॉलेज दिस रही है, टेंशन हो जाती है।
4: होना की है, अपनी कांड कितने मुरे आंदे।
3: केड़े कांड भाई?
4: क्यों भुल गया उस दिन सर?
5: ओ भाभी, भाभी

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए सर।
1: हाँ, पंजाब चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, राहुल मीना।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दूल्हे का सेहरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: हम गंगापुर सिटी से कर रहे हैं।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सुना दो सर, लाल परी लाल।
1: लाल परी सुना रहे हैं सर आपको, आपकी

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: नितिन गोठवाल।
1: गोठवाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: होपलेस।
1: सुना रहे हैं सर।

Fakira.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे।
2: रेडियो बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे।
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों बग तो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाई। सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6
1: बीट में है सिटी का स्वर 89.6
2: पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का।

0: दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: और नवीनीकरण का काम करवाते रहे जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में, यानी कि साल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी। और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए ये बड़े बड़े ताले हों, या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल, उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सब्जियों का उपयोग करके बनाई गई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको इतनी सुंदर लगेंगी कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशाले जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि साल 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो जयपुर शहर की भीड़ भाड़ से करीब 11 किलोमीटर दूर ये किला आमेर में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊपर तक अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो थोड़ी थकावट आपको हो सकती है, और अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो अपने निजी वाहन और यहाँ मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक, ये खूबसूरत आमेर का किला, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। भी कहा जाता है इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत वो सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने इन घरों में नहीं रहते हैं उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनके मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। यहाँ पर आपको बहुत से प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। वो सामने में जो आप देख रहे हैं वो है मीरा मंदिर। वहाँ पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी का बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है, और वहाँ उस तरफ में जैन मंदिर है जो कि 12वीं शताब्दी का है। यहाँ चारों तरफ आपको अरावली हिल्स दिखाई देगी और ऊपर में किले की बाउंड्री दिखाई देगी जो कि कुल मिलाकर 12 किलोमीटर की है और पूरी ओल्ड सिटी को कवर करती है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर में आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई देगा जहाँ सैनिक रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस किले को सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आमेर और जयगढ़ दोनों किले एक ही परिसर में माने जाते हैं और इसी वजह से दोनों किले 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। राजा मान सिंह के समय में उनके महल में, यानी कि मानसिंह पैलेस में प्रवेश करने के लिए ये सामने वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे जिसको कहा जाता है रावण हत्था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बजाया जाता है। इसी तरह से बीकानेर में इकतारा और जैसलमेर में अलगोजा बजाया जाता है। इस महल में 4 कोर्टयार्ड यानी कि आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हैं, जो कि उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाजा ये सामने वाला हुआ करता था जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है और पोल का मतलब होता है गेट, इसीलिए इसको सूरज पोल के नाम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर के धुन
1: करा दाया मुंडा पक्का साब दे किताब दा हाय कर जे ना गुस्सा किते मेरे ओ जवाब दा
2: निजे बावे च रौंद रख दे
3: फिकरा च रख दे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: बेटा जी मैनू अपनी ड्यूटी करन दो।

0: की गल बड़ा प्यार आ रहा।
1: बाबी जिदा दा भी आ जो भी आ है ते मेरा ही ना।

Jean-Mio.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं, इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कारी एकरम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कारी एकरम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: तेरे बिन आज की ना लगे।
1: कौन सा सर?
0: तेरे बिन आज की ना लगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
0: ओके।

0: हेलो
1: परम आदरणीय पलक दीदी, सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना व्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: फिल्म का नाम है भूल भुलैया। मेरे ढोलना सुन, प्यार की धुन सुन।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
1: नमस्ते सर। हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते पलक जी, चौधरी बोल रहे हैं भावी जी।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज से जल्दी आ जाएगा दीदी नम।
1: हाँ जी,
0: ऊपर एक गाना लेकर आए।
1: हाँ जी बताइए।
0: रविंद्र जैन की आवाज में है गाना।
1: हाँ जी,
0: रविंद्र जैन की आवाज में है, मल्हार है, झूला तो पड़ गए।
1: झूला तो पड़ गए
0: अमुआ की धार पे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
1: जी, वेलकम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राहुल।
0: कौन से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नॉट गिल्टी।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश? तरीके

0: क्या है सर?
1: मेरा नाम सादिर है, गंगापुर सिटी दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नहीं, तुम मुझसे बात करती हो।
0: कौन सा सर?

0: देखो अनीता, नाम क्या है आपका?
1: विमल, ओनली विमल मामा, मऊ कला गंगा पड़ते थी।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: अजी राम से आप
1: विराट कोमल
0: कौन से बात कर रहे हो? विराट जी कौन से बात कर रहे हो?
1: नीमा दो इसके
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: 37 करें
0: ओके 37।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: किस,
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अमन राज के लिए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शुभम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नवा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म चंद्रावन देखूं।
0: ओ कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका? कहाँ
1: बोलू मीना,
0: से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: नहीं आ रहा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: फिल्म में फालतू कालू सी चाल बंदरावल है।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारी

जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती।
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो,
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, जब तक जी रही हूँ ये दुआ करती हूँ, तू हर रोज मरे मैं जिस तरह मरती हूँ।

0: जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम मुझसे शादी करेगी?
1: हाँ।
0: प्रॉमिस?
1: प्रॉमिस।
0: तो फिर मैं अभी आया।
1: उफ़ो, ये फिर कहाँ चला गया?
0: तो फिर साइन कर इस पे।

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है,

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गए।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल